नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च

है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में

अनूप जलोटा की आवाज में आपने सुना ये खूबसूरत भजन। और आपको बताऊं क्या, पहले तो मुझे विश करना है आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग कोलकाता। सुबह के 7 बज चुके हैं और कोलकाता अभी भी अंगड़ाई ले रहा है। चाय की केतली में उबाल है, अखबार वाले की साइकिल की घंटी है और आप सुन रहे हैं अपने इस रेडियो दोस्त को। जी हाँ, पॉपी है आपके साथ, क्योंकि भाई आज का दिन है 5 अक्टूबर, सोमवार का दिन। आज विश्व में बहुत सारी चीजें होने को है और बहुत सी बात

हफ्ते हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है 8 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह सुहानी करते हैं हम, जी हाँ, सुहानी सुबह कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज का दिन एक बार फिर से सुहाना बनाने की कोशिश हमारी जारी है। बने रहिए, साथ रहिए एक खूबसूरत चित्रकार के साथ, जिन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया।

सुखविंदर के साथ हम भी यही कह रहे हैं कि ऋतु जो है वो आ गई है और कोलकाता में दुर्गा पूजा का जो मौसम है वो कैलेंडर में नहीं आता, वो तो हवाओं में आता है। इस साल 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये पूजा है और महालय 10 अक्टूबर को, लेकिन आज 5 अक्टूबर को ही इस मौसम की आहट की शुरुआत हो चुकी है। आप सुबह उठो या फिर शाम की भी अगर बात करें तो हवाओं में एक अलग सी महक है, एक अलग सी खुशबू है और यही तो है शरद का आगमन। जी हाँ, पूजा का जो मौसम है दुर्गा पूजा, जो कि बहुत ही व्यापक रूप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, वो जो मौसम है असल में 3 मौसमों का संगम है। बारिश खत्म, बादल सफ़ेद, अश्विन महीने के जो नीले आकाश में जो काश फूल हिलते हैं, आपको जो दिखते हैं वो भी माँ का आने का सिग्नल कह सकते हैं, एक इशारा है कि माँ बस अब आने ही वाली हैं। सुबह शाम हल्की ठंडक, दोपहर में तेज धूप विद ह्यूमिडिटी, यही है शरद काल। और सच पूछिए तो कुमारटोली में अब जो मिट्टी जो है वो गीली नहीं है, वो सूख रही है धीरे धीरे और माँ की आंख में अब रंग भरा जा रहा है। गली गली में पंडाल बन रहे हैं और ये जो पंडाल का जो ढांचा है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर आने को है और हर नुक्कड़ पर वो जो बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर्स हैं, हालांकि कंट्रोल है, जो डेसिबल कंट्रोल है वो कंट्रोल रखा जाएगा हर साल की तरह, और बहुत सारे बिजलियों की जो तारे हैं वो लटक रही हैं और उन्हें वो कहते हैं ना एक अंतिम एंडिंग पर उसको पहुंचाया जा रहा है। और जो सबसे खास है कि इस मौसम में कोलकाता का हर आदमी, हर इंसान, हर शख्स अमीर हो जाता है। जी हाँ, हर किसी के पास एक नया ड्रेस, एक क्यों, क्योंकि 4 दिन खास करके जो मनाया जाता है उन 4 दिनों में 4 मिनिमम ड्रेस तो होते ही हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता का जो कम्यूटर सिस्टम है यानी कि जिस पे हम आवाजाही करते हैं, बस कहिए, ट्रेन कहिए, उसमें जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इतनी सारी तकलीफ जो हम झेलते हैं उसके बाद एक खुशी है और एक दिल में एक उम्मीद है कि माँ आ रही हैं। जी हाँ, माना जाता है कि स्वर्ग लोक से धरती पर माँ का आगमन होता है महालय के बाद और दिल में एक बहुत बड़ी उमंग जागी रहती है। तो इस उमंग और कहते हैं ना पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, सुहानी सुबह पॉपी है आपके साथ 100.1 FM गोल्ड पर, चक दे इंडिया।

इस गीत को सुनाने की एक खास मकसद है दोस्तों, 20वें एशियाई खेल 2026 का समापन हुआ। आपको बताएं कि 19 सितंबर से शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा खेल मेला आखिरकार कल 4 अक्टूबर 2026 को जापान के नोगोवा में खत्म हुआ। आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे कि समापन समारोह आइची नागोआ के उसी मिजोहा पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुआ जहां पर उद्घाटन हुआ था। जापान के समय के अनुसार शाम 6 बजे और भारत में दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए इस रंगारंग समारोह का जो थीम थी वो थी वन एशिया। समारोह में सभी 45 देशों के खिलाड़ी देश के क्रम में नहीं बल्कि एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्टेडियम में आए। यही एशियाई खेलों की सही में असल खूबसूरती है। जापानी संस्कृति के पारंपरिक नृत्य, टाइको ड्रम और आधुनिक लेजर शो ने सबका दिल जीत लिया और अंत में एशियाई खेलों की ज्योति को बुझाया गया। बताना चाहेंगे कि इस बार समापन में तिरंगा थामने का सम्मान मिला हरियाणा की शूटर नीरू ढांडा को। नीरू इस खेलों की सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी रही। महिला व्यक्तिगत ट्रैप में गोल्ड, इस स्पर्धा में भारत की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट, मिक्स्ड ट्रैप टीम में गोल्ड एशियाई रिकॉर्ड के साथ और महिला ट्रैप टीम में सिल्वर। उद्घाटन में मनु भाकर और पवन सहरावत ध्वजावाहक थे। समापन में ये जिम्मेदारी नीरू ने निभाई। और तो और वो कहते हैं ना, बहुत सी बातों के साथ आपको बताना चाहेंगे कि समारोह का सबसे अहम पल था फ्लैग हैंड ओवर। जापान ने एशियाई ओलंपिक परिषद का झंडा अगले मेजबान कतर को सौंप दिया। अब 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा में होगा। दोहा ने इससे पहले 2006 में भी मेजबानी की थी और उस वक्त थीम था द गेम्स वी लिव फॉर। वेल, अब समय हो गया है बताने का पदक के बारे में। जी हाँ, भारत का प्रदर्शन था 85 पदकों के साथ चौथा स्थान। इस बार के कुल 495 एथलीट पहुंचे थे और कुल 85 पदक हमने लेकर अपने झोली में पहुंचे हैं वापस, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 यानी कि 37 ब्रोंज। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर चीन के बाद है, यानी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बाद भारत है। जाहिर सी इच्छा मन में होती ही है कि क्या क्या कहां कहां हम आगे बढ़े हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि हॉकी में इतिहास रचा गया है। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। 44 साल में पहली बार पुरुष टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर ये LA 2028 ओलंपिक्स में अपना टिकट, अपनी जगह पक्की कर गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिकेट में भी दबदबा रहा। पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से और महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीते। निशानेबाजी और तीरंदाजी की अगर बात करें तो नीरू ढांडा के अलावा 17 साल की कुमकुम मोहोद ने तीरंदाजी में 48 साल बाद भारत को पहला इंडिविजुअल गोल्ड दिया। और तो और अमन सहरावत, प्रणवी जैसे नए सितारे चमके कुश्ती गोल्ड कबड्डी में। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हालांकि ये इंफॉर्मेशन छोटी नहीं कह सकते, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, ये एक ऐसी ये बातें ऐसी है कि जो भारत को एक अलग जगह पर पहुंचा रही है। नागोआ में लौ तो भले ही बुझ गई, मतलब बुझा दिया गया, लेकिन जो लौ भारतीय खिलाड़ी अपने दिल में लेकर आए हैं वो 2030 दोहा तक और भी तेज होगी। और जाहिर सी बात है, 2030 में हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो और भी
आगे होगा वो और भी बढ़ चढ़ कर होगा, और उस वक्त भी हम आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम सुहानी सुबह, एक खूबसूरत सुबह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिविटी का इशारा होता है, ताकि आपका जो दिन है वो बेहद बेहद खूबसूरत जाए और ज़िंदगी की जो भी बाजी आपके सामने आए उसे ये कोशिश रहती है कि वो हम ज़रूर जीतेंगे।

7:44 और आपको बताने का वक्त आ गया है कि आज के दिन का मौसम कैसा रहेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना यानी कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना दोनों जिलों में कैसा मौसम होने वाला है। तो बता दूं कि तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस दोपहर में और 33 और 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। गर्मी लगेगी लेकिन फील जो है वो 38 डिग्री का होगा, यानी कि दिन का जो तापमान है अधिकतम तापमान एवरेज 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने वाली है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आसमान में सुबह तो आपने हल्की धुंध पाई है और दिन में अगर देखा जाए तो आधा वो कहते हैं ना सनी और आधा क्लाउडी यानी कि आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश का पूरी तरह चांसेस है यानी कि हल्की बारिश होने वाली है और IMD यानी कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल के लिए अलर्ट भी जारी है क्योंकि 65 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है दार्जिलिंग, बांकुड़ा, हावड़ा, दुर्गापुर, मालदा में। तो कोलकाता में भी अचानक तेज बारिश और आंधी होने की संभावना है और नमी की अगर बात करें तो वो 68% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है उमस रहेगी, गर्मी रहेगी और गर्मी के साथ साथ आप अपना वो जो पूजा का जो मार्केटिंग है वो करेंगे, लेकिन हाँ साथ में छाता या रेनकोट लेना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि दोपहर के बाद अचानक बारिश होने की पूरी तरह से संभावना है। एंड द बेस्ट टाइमिंग फॉर पूजा शॉपिंग इज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 7 बजे कौन सा मॉल खुला रहेगा, वो आपको देखना है। इसलिए अगर सेकेंड हाफ में जाना है तो पूरी तरह से तैयार होकर जाना है ताकि आप बारिश में ना भीगे। और वो कहते हैं ना पूजा इज जस्ट नॉकिंग एट द डोर और ऐसे में हम किसी भी हाल से नहीं चाहेंगे कि आप बीमार पड़े। और रही बात क्वालिटी ऑफ एयर की तो 152 होने की संभावना है, इसलिए बेहतर है कि जब आप बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो दिल है वो मजबूत रहेगा। और साथ ही बताएं कि पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्डिंग की गई है तापमान का वो कुछ इस प्रकार है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 दर्ज किया गया। हवा में नमी की बात करें तो अधिकतम नमी 96%, न्यूनतम नमी 64% और बारिश हुई है 1.4 मिलीमीटर। जो कल बाहर गए थे उन्हें मालूम है किस तरह से बारिश हुई और वही बारिश आज भी होने वाली है और इसलिए आपको तैयार रहना है। फिलहाल अगला गीत एक बहुत ही खूबसूरत गीत वाणी जयराम की आवाज़ में और फिल्म का नाम है गुड्डी। ये सभी जो गाने मैं सुनाती हूँ कोई ख़ास वजह तो ज़रूर होती है, आप वो वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे लेकिन इस गीत को सुनाने के

दो चोटियों में स्कूल ड्रेस में दिखी थी जया भादुरी इस गीत में, और जब गुलजार साहब को बताया गया कि इस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करती हुई जया भादुरी के लिए एक गीत लिखना है, तो उन्होंने इन्हीं अल्फाजों को लिखा था। जी हाँ, फिल्म गुड्डी से आपने सुना ये खूबसूरत गीत। वैसे वजह क्या है? खास वजह ये है कि आज 5 अक्टूबर है, और आज का इतिहास अगर देखें, आज इतिहास के पन्नों को अगर पलटें, तो आपको बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में शिक्षकों को सलाम किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1994 में यूनेस्को ने की थी, क्योंकि 5 अक्टूबर 1966 को ही शिक्षकों के अधिकारों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। तो ये थी आज की खास बात। आज का दिन खास क्यों है? सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही के दिन आपको बताना चाहेंगे कि सन 2019 में धारा 370 हटने के 2 महीने बाद 5 अक्टूबर 2019 को पहली बार जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव का ऐलान किया गया था। अगर विश्व की बात करें तो आज ही के दिन, जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन सन 1799 में, यानी कि 1789 को पेरिस की हजारों महिलाओं ने वर्सॉय पैलेस तक मार्च किया था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा मोड़ था। और आज ही के दिन सन 1962 में दुनिया की पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म डी आर नंबर, यानी कि डॉक्टर नंबर, आज ही के दिन

1962 में लंदन में रिलीज हुई थी। और अगर जरा वापस हम अपने देश की ओर करें तो आज ही के दिन सन 1887 में मेघनाथ शाह यानी कि भारत के बहुत ही प्रख्यात मशहूर वैज्ञानिक जिनके नाम पर बहुत कुछ है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो इतिहास आज का दिन बहुत अच्छी तरह से याद रखा है। फ्रांस की महिलाओं ने राजा से सत्ता छीनी, एक वैज्ञानिक ने सितारों का राज बताया और शिक्षा का सम्मान हुआ, शिक्षकों का सम्मान हुआ। तो आज के दिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं, अपने किसी पुराने टीचर को, शिक्षक को, उनको अगर आपके पास उनका नंबर हो, अगर नंबर नहीं भी है तो आजकल सोशल साइट के माध्यम से हम उन तक पहुंच ही जाते हैं, तो उन्हें जो कि आपके बहुत दिल के करीब थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है आपकी ज़िंदगी में, उन्हें एक थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। तो ये काम आज के दिन अवश्य कीजिएगा, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। और हमारा तो काम है कि हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि न केवल आपकी ज़िंदगी में खुशी रहे, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी खुश रहें। फिलहाल एक खूबसूरत गीत आज के लिए, इसलिए क्योंकि आज ही के दिन सन 1971 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था और इसी दिन 1971 में भारत में गेहूं की नई किस्म कल्याण सोना को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली और जिससे हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। और जब बात ग्रीन रेवोल्यूशन की होती है तो आंखों के सामने केवल और केवल हरे भरे लहलहाते खेत नजर आते हैं। तो आइए उस लहलहाता खेत का एक खूबसूरत दृश्य आपके दिमाग में पिरोने की मैं कोशिश करती हूँ उस गीत से जो कि मैंने नदिया के पार से लिया है। और इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ 9:10 पर हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी कार्यक्रम रसधारा में, जी हाँ आकाशवाणी कोलकाता संचयिता में। लेकिन एक बार फिर से वापसी FM में होगी 10:02 पर लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। फिलहाल FM गोल्ड से पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार और जाते जाते छोड़ जाती है हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद

0: सोनवार आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। दो नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
3: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
4: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
3: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
5: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इसराइल ने इस घटना को आतंक

0: वादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
3: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात, हिंदुस्तान ने लिखा है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन बेंजामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला

0: विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद स्विस प्रेसिडेंट गी पामेला इन न्यू दिल्ली टुडे। Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Pamela will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Pamela will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Pamela will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Pamela will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Pamela. More from our correspondent.
3: Earlier in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: In Assam, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal will flag off the maiden international cargo voyage from the newly constructed Bogibeel Terminal in Dibrugarh today. Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also join the flag-off ceremony. A report.
4: With the flagging off of the cargo voyage today, Dibrugarh is set to restore its pre-independence legacy as a major inland waterway trade hub. For the first time in more than 8 decades, an international cargo consignment will sail directly from Assam to a foreign port.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला अधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: इंडिया एंड रशिया हैव हिस्टोरिकली वेरी गुड रिलेशंस।
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इटली के अखबार कोरियेरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सहपायलट ने विमान के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। अखबार के अनुसार ओमानी सहपायलट हम्माम अल हम्मामी ने विमान पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी साथ लाए हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी।
3: दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। दोनों नेता नई दिल्ली में बैठक के दौरान ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए थे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया था कि व्यापक व्यापार समझौते की रूपरेखा से दोनों देशों को स्थायी लाभ होगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 4,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की साझा आकांक्षा को समर्थन मिलेगा। भारत और कनाडा के बीच 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ। भारत ने इस दौरान कनाडा को 4 अरब 22 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली के अखबार कुरियरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इसराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इसराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
5: And Russia have historically very good relations.
6: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
7: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

बिल्कुल हम नहीं भूले हैं और इसीलिए तो अपने वक्त के अनुसार अपने वक्त के साथ आ चुके हैं 100.1 एफएम गोल्ड पर, जहां आप सुन रहे कार्यक्रम लो आ गई। जी हां, और हम उनको भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपने किरदार के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो सबसे अलग था, जो सबसे जुदा था। वैसे ये पहचान किसकी है वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन आइए पहले एक दो गीत और सुनते हैं जिनको आज के दिन हम याद करेंगे हमारे इस फेवरेट कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में।

चुड़ी की डिजिटल क्लॉक कह रही है 11:23:47। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मौसम विभाग से एक सूचना मिली है जिसे मुझे लगता है आपसे साझा करना आवश्यक है। अगले 2 से 3 घंटे जलपाईगुड़ी जिला में, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर में, इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने को है, यानी कि आंधी तूफान होने को है। और ऐसे में हल्की बूंदी बारिश साथ गरज के साथ छींटे होने की पूरी तरह से संभावना है। तो आप ऐसे में अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर बनाए रखें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग से। और आगे चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत सुनाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस गीत को सुनने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि आज हम किस शख्स को लेकर बातें कर रहे हैं, किनकी याद हम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम लो आ गई उनकी याद में।

हसरत जयपुरी का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, और आपने ये गीत सुना फिल्म गुमनाम से। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि अगर बॉलीवुड में कोई एक एक्टर ऐसा था जिसको देखकर बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सीना 36 से 46 हो जाता था, या जिसके गाने सुनकर आपके अंदर देशभक्ति का जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़ोर से उछाल मारता था, तो वो बस और बस एक ही शख्स था, वो थे मनोज कुमार। जी हाँ, उनका असली नाम हरि

किशन गोस्वामी और 24 जुलाई सन 1937 को पंजाब के अबोटाबाद में उनका जन्म हुआ, जो कि बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में हो गया था। लेकिन फिर वो दिल्ली आ गए और फिर अपना नाम बदल कर उन्होंने मनोज कुमार रखा। वैसे क्यों रखा उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि दिलीप कुमार के वो बहुत बड़े फैन थे और उनके दिलो दिमाग में मतलब वो छवि थी कि काश वैसा ही कुछ मैं बन सकूं, और उन्होंने अपना नाम रख लिया मनोज कुमार। तो ये थी उनके नाम के बारे में बातें, और ऐसी बहुत सी बातें हम बताएंगे आपको। हमारा और आपका साथ 12 बजे तक बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। और अब आपको सुनाते हैं एक वो ट्रैक जिस ट्रैक के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सी बातें जुड़ी हैं वो बताएंगे। आइए सुनते हैं उपकार फिल्म का ये फॉर एवर ऑल टाइम सॉन्ग, जो हमेशा और ख़ास करके अगर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस गीत के बिना हमारा कार्यक्रम हमेशा अधूरा लगता है।

मनोज कुमार, जी हाँ, आज लू आ गई उनकी याद में। हम मनोज कुमार को याद कर रहे हैं और अगर उनकी बात कहें तो वो कभी भी सिक्स पैक्स एब्स वाले हीरो कभी भी नहीं थे। ना उन्होंने कभी बाइक पर अपने हीरोइंस को घुमाया, ना ही उन्होंने बहुत हाई फाई रोमांटिक सीन्स किए, स्विट्ज़रलैंड गए, बड़े बड़े लोकेशंस में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा वो धोती कुर्ता पहनकर खेतों में खड़े दिखते और जय जवान जय किसान कहते। कहा जाता है कि 1900 ये सुनी हुई बात है कि 1965 में किसी एक विशेष अनुष्ठान में लाल बहादुर शास्त्री जी से उनकी मुलाकात हुई और उनसे कहा जय जवान जय किसान पर कुछ बनाओ, और मनोज कुमार ने बना दी ये फिल्म 1967 में, जिसका नाम है उपकार और जिसका गीत आपने सुना। और इस फिल्म ने न सिर्फ वो कहते हैं ना कि 100 करोड़ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड जीता और तब से मनोज कुमार का नाम पड़ गया भरत कुमार। जिस तरह से लोगों ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन कहा, वहीं मनोज कुमार के लिए उनका कहना था देश का आइडियल यंग मैन। उनके जो गीत होते थे, जो पिक्चराइज किए जाते थे जिन गीतों पर उन्हें, वो रुलाते हैं नहीं बल्कि खुद वो गानों में रोते नहीं थे बल्कि पूरे ऑडियंस को रुलाते थे। उनके गानों में एक अलग सी जादू थी, खास करके अगर आप ये वाला गाना फील करें 1967 में जब

युवा वर्ग जब ये गीत को सुनता था तो उसे ये फील होता था कि मैं भी खेतों में जाकर हल चलाऊं। मज़ेदार बात यह है कि इस गाने को सुनकर शहर के बड़े बड़े लड़के, अमीर अमीर लड़के, अपने आप में उन्हें उनके भीतर एक किसान बनने की ख्वाहिश जग उठती थी। भले ही 10 मिनट बाद वो एसी में जाकर अपना काम शुरू करते थे, लेकिन यस, जिस समय ये गीत

उठता था। और सच पूछिए तो एक और गीत के बारे में ज़रूर बताऊंगी, और वो है एक प्यार का नगमा। ये गाना इतना पवित्र माना जाता है, और इस गाने के भीतर अगर आप सही में अपने सेंटिमेंट्स को ढूंढे तो कहीं दिल की सच्चाई बहुत ऊपर दिखती हुई नज़र आती है। आइए सुनते हैं फिल्म शोर का वो गीत जो वाकई करोड़ों दिलों पे राज कर गई।

1972 में संतोष आनंद के द्वारा ये गीत लिखा गया था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आज बात हम कर रहे हैं मनोज कुमार की, और एक खास बात जो उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, उन्हें इंडस्ट्री में द नो टच हीरो कहा जाता था। आज के हीरो तो टीजर में ही हीरोइन को 10 बार घुमा देते हैं, पर मनोज कुमार उनका ये उसूल था कि प्यार आंखों से होता है, हाथों से नहीं। और यही वजह थी कि मनोज कुमार हमेशा ये कहते थे कि मैं भारत की महिलाओं को स्क्रीन पर रिस्पेक्ट से देखना चाहता हूँ, वो मेरी बहन जैसी हैं, माँ जैसी हैं, और मैं उससे छूकर रोमांस कैसे कर सकता हूँ। वो कहते थे कि अगर कोशिश की जाए तो ऐसा भी किया जा सकता है, और वो कामयाब थे। उनका ये जो स्टाइल था अपने हीरोइंस के साथ रोमांस करने का, वो बिल्कुल ही अलग था, सबसे जुदा था। हीरोइन को 5 मिनट तक बिना पल के झपकाए देखते रहना और हीरोइन का शर्मा जाना, बस हो गया रोमांस। सिर्फ इतना ही नहीं, गानों में हीरोइन के दुपट्टे को उड़ाते हुए वो उसको देखते हैं और दुपट्टे को पकड़ते हैं, बस कैमरा का फोकस वहीं तक होता था। 2 कदम दूर खड़े होकर एक प्यार का नगमा है, पूरा गाना गा दिया उन्होंने, और पूरे गाने में एक उंगली तक भी उन्होंने टच नहीं किया। तो ऐसे थे हमारे मनोज कुमार, जिसे भारत कुमार भी कहा जाता है। सायरा बानू, आशा पारेख, माला सिन्हा जैसी टॉप हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया, पर कभी भी किसी को ये शिकायत का मौका नहीं दिया कि उन्होंने कभी कोई लाइन को क्रॉस किया है। और मतलब आशा पारेख जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मनोज के साथ मैं सबसे सेफ महसूस करती हूँ, वो सेट पर भी सबको बहन जी कहकर बुलाते हैं। सो दिस वॉज मनोज कुमार। और मजे की बात सुनाऊं आपको, एक बार प्रेम चोपड़ा ने मस्ती में कहा, मनोज तू रोमांस के सीन में हीरोइन से इतना दूर क्यों खड़ा होता है, लेंस में फ्रेम में आएगा ही नहीं। और मनोज कुमार हंसकर जवाब दिया कि प्रेम, प्यार का मतलब पास आना नहीं, पास लाना होता है। मैं भारत की संस्कृति को पास ला रहा हूं। और सच में उनके गानों में वो शालीनता, वो भद्रता दिखने को मिलती है।

मनोज कुमार की अगर बात करें जो आज हम कर रहे हैं, तो वो अपनी हर फिल्म खुद लिखते थे, खुद डायरेक्ट करते थे, खुद एक्ट करते थे, मतलब एक आदमी और पूरा पैकेज। 4 अप्रैल 2025, जी हाँ 2025 को 87 साल की उम्र में वो हमें छोड़ गए। लेकिन सच कहूँ तो वो गए नहीं हैं। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को टीवी पर उन पर फिल्माए गीतों को हम सुनते हैं, मेरे देश की धरती और भारत का रहने वाला हूँ, तो लगता है मनोज कुमार आज भी हमारे साथ हैं। आज के हीरोज 100 करोड़ 150 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन मनोज कुमार एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 100 करोड़ 150 करोड़ दिलों में राज किया। और बस उन्हें इस थोड़े से समय पर उनके बारे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं, इतनी विस्तार पूर्वक बातें हैं, लेकिन चूंकि हमारा समय हो चला है और टाइम फॉर मी टू वाइंड अप, तो ऐसे में कार्यक्रम के आखिरी गीत के नाम पर मैं उस गीत को पेश करना चाहती हूँ जहाँ पर भारत ने भारत की पहचान को फिर से उजागर किया। आइए सुनते हैं पूरब और पश्चिम का ये गीत, और ये गीत सुनते सुनाते मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पाहमला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पाहमला के बीच बैठक में

0: कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding bilateral discussions with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. During the talks, they will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a 3-day state visit to India, accompanied by a high

0: दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 14 दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप सभी का स्वागत है कलाकार बेमिसाल में। और दोस्तों एक ऐसे कलाकार थे, हैं आज भी, बहुत ही खूबसूरत उनका चेहरा है और शानदार उनकी आवाज है। ये दोनों क्वालिटीज उनके पास थी और जैसे ही पहली फिल्म में उन्हें गाने का मौका मिला, सुनने वालों के दिलों में उन्होंने हलचल मचा दी।

0: announced the start of military operations to retake Houthi-held territories and restore state authority across the country. President Rashad al-Alimi announced this, saying that the efforts to de-escalate had been exhausted. On the ground, Yemeni forces reported heavy clashes across several fronts in Taiz. They claimed to have thwarted Houthi infiltration attempts and reported hundreds of Houthi casualties. The Houthis, however, have rejected some of these claims. Meanwhile, Saudi Arabia has placed full operational support to Yemen's armed forces, saying the campaign will continue until the state authority is restored. These developments could potentially escalate the Yemen conflict and open a new phase of fighting. Manish Shiva, Akashwani News, Dubai.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbh and some more parts of Maharashtra and Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Telangana, Sub-Himalayan, West Bengal and Lakshadweep till tomorrow. Similar weather conditions are also expected over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura for the day. Meanwhile, strong surface winds are expected over Andhra Pradesh during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon session today. The Sensex rose 218 points to 72,128, while the Nifty added 71 points to 22,493 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained almost 0.5% and the small-cap 100 index advanced 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामलां की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक

0: साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
0: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
0: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
0: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी, कहीं भी, expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है. बातचीत अभी भी जारी है. हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं.
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है. उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया.
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है. इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है. भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है.
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया. इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है. मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा. आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया. आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं. नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है. विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है.
6: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है. 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है.
7: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है. ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है.
6: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा.
8: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे. आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी. यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है.
6: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है. ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
9: अपडेट रहे, आगे रहे. expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें.
1: ये आकाशवाणी है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी. न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि

0: राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए क्रियान्वयन किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि

0: हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामलन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्दी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने जो मान मुझे दिया है, जो इज्जत मुझे दी है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। अपने बारे में मैं आपसे क्या कहूं। एक दिन था, इसी जगह से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। दिल धड़क रहा था। आज एक दिन है, उसी जगह आप सब ने मुझे इतना मान दिया, आज फिर दिल धड़क रहा है। जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। और मैं आपसे क्या कहूं, चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें,

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें,

दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुझे और कोई अफसोस नहीं है शोभा, मुझे किसी बात का गिला नहीं, रंज नहीं। अगर गिला है, रंज है, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने तुम्हें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिक एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामला शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक 3 और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की 5वें दौर की बातचीत करेंगे। इस व्यापार समझौते के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। यह वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यह याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोप के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल को 30 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। यह पोर्टल लोगों को अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने वाले नागरिक संचार साथी पोर्टल के साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल, ऊंची कीमतें और खाद्य मुद्रा स्फीति तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में अवसर तलाश सकती है। इससे पहले भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पहामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर आए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

5:22 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर सुन रहे हैं आपकी अपनी जी हाँ बेस्ट फ्रेंड और मेरा नाम है शर्मिशा, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है चाय एंड क्लासिक्स। और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर। तो चलिए फिर एक बार हाजिर हो चुकी है आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए मैं और आप हम दोनों मिलकर आज की इस शाम को बनाते हैं थोड़ा और रंगीन। और वैसे तो शाम हर रोज़ आती है, हर रोज़ होती है शाम, लेकिन आज की शाम अगर किसी तरीके से, जी हाँ किसी तरीके से आपके लिए खास है, आपके लिए अलग है, तो ये आने वाला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: इम्तिहान फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, जिसे संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, मजरू ने बोल दिए थे इस गीत के लिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से तराने को। और वाकई में शाम तो हर रोज़ आती है, सूरज भी हर रोज़ ढलता है, लेकिन कभी कभार कोई शाम एक ख़ास मैसेज दे जाती है। और ये जो ख़ास वाली जो बात है ना, जी हाँ, ख़ास वाली जो शाम है वो कभी कभार ही आती है ना। और ये जो ख़ास वाली शाम है, स्पेशल शाम है, ये हमारे आने वाले समय को कर देती है और ज़्यादा रंगीन। और इस ख़ास वाले शाम से जुड़ जाती है बहुत सी अच्छी अच्छी यादें, जिनके सहारे हम आने वाले समय को और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आगे लेकर चल पाते हैं। तो चलिए फिलहाल एक फिल्मी गीत की ओर रुख करते हैं। और इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक तराने आप सभी के इंतज़ार में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बातें होंगी आज के खास दिन को लेकर। तो जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम का साथ रहता है पूरे 6:30 तक। तब तक के लिए एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: पांच बजकर 33 मिनट है। जुड़ी घड़ी का समय 100.1 FM गोल्ड परियोजना प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज स्किल इंडिया मिशन को लेकर। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग अनुकूल तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना और उनकी कार्यकुशलता में सुधार करना है। इस योजना से जुड़ी मुख्य उद्देश्यों की अगर बात करें तो युवाओं को उनकी पसंद और बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके अलावा कामगारों के कौशल को नया रूप देना और आधुनिक तकनीकों के साथ उनका उन्नयन करना, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग करके समग्र आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना। स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसे देश के युवाओं को कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है और उन्हें अपने कार्य वातावरण में अधिक रोजगार योग्य और अधिक उत्पादक बनाना है।
0: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक। बात कर रहे थे स्किल इंडिया मिशन को लेकर। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर बात होगी दोबारा आपसे परियोजना प्रस्तुति में। लेकर आएंगे एक नई योजना जिसके बारे में बात करेंगे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। तब तक के लिए रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। कार्यक्रम चल रहा है जायंट क्लासिक्स।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, 100.1 FM गोल्ड पर।

पाँच बजकर 36 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर शर्मिशा करती हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। 100.1 FM गोल के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज की शाम शर्मिशा के संग आप सभी श्रोताओं का साथ है, साथ ही एक बढ़िया सा कार्यक्रम जिसे आप हर रोज़ इसी समय इसी कार्यक्रम के इसी चैनल के ज़रिए सुनते हैं, जिसका नाम है चैन क्लासिक्स, और जिसे संग रखते हुए साथ ही साथ एक गर्मा गर्म चाय की प्याली, बस इन्हीं चीज़ों का साथ अगर हो तो बन जाता है शाम एक बहुत ही खूबसूरत शाम। और चलिए आज की शाम को करते हैं थोड़ा सा और रंगीन। और फिलहाल मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में साजन की सहेली फिल्म से ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

साजन की सहेली फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। फिलहाल 5:45 है शुरू की घड़ी का समय और संग है आप आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है जैंट टैसिक्स। और चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात कर रही थी आज के खास दिन को लेकर। जी हाँ, आज का दिन डेडिकेटेड है टीचर्स के नाम, शिक्षकों के नाम, गुरुओं के नाम, वो गुरु जिन्होंने हमें अच्छे बुरे की पहचान कराई, ज्ञान दिया हम सभी छात्रों को। और विश्व स्तर पर आज के इस दिन को मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे नाम दिया गया आज के इस दिन को, विश्व शिक्षक दिवस आज ही के दिन यानी कि हर साल 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई यूनेस्को द्वारा साल 1994 में। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य इस दिन को मनाने के लिए आखिर उद्देश्य क्या रहा होगा, इसके अलावा इतिहास से जुड़ी बात भी करूंगी इस दिन को मनाने की, तो जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ। इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस के साथ साथ भारत में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको लेकर भी बातें होंगी। तो फिलहाल रुख करते हैं एक प्यारे से तराने की ओर और उसके बाद आज के खास दिन को लेकर तो होंगी ही बात। तब तक के लिए मन्ना दे और आशा भोंसले की आवाज़ में हसीना मान जाएगी इस फिल्म से ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत दिया गया था इस गीत में।

बड़ा ही प्यारा सा तराना सुना और सुनवाया मना दे और आशा हौसले की आवाज़ में हसीना मान जाए कि इस फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को जिसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी कि ठीक 6 बजे मैं और आप जुड़ेंगे समाचार की दुनिया के साथ और ठीक 6:10 पर इस कार्यक्रम को साथ लिए

शर्मिष्ठा फिर एक बार हाजिर हो जाएगी, आप सभी श्रोताओं के पास पहुंच जाऊंगी। तब तक के लिए रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर, और गीत को सुनते सुनते मैं और आप जुड़ेंगे समाचार की दुनिया के साथ। और फिलहाल लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our TST.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: छः बजकर 11 मिनट है स्टूडियो घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर। दोबारा शर्मिष्ठा और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। और चलिए फिर एक बार न्यूज़ ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं बात कर रही थी आज के खास दिन को लेकर, जी हाँ, विश्व स्तर में, पूरे विश्व में वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जा रहा है। और आज का दिन यानी कि 5 अक्टूबर डेडिकेटेड है हर उस गुरु के नाम जिन्होंने हमें सही राह पर, सही मार्ग पर चलना सिखाया। अगर मुख्य उद्देश्य की मैं बात करूं तो शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए आज के इस दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और शिक्षण पेशे की स्थिति में सुधार करने के लिए भी इस दिन को मनाने की जरूरत हुई। आगे बात करूंगी आज के इस दिन से जुड़े इतिहास को लेकर। और फिलहाल एक प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से तराने को। और चलिए तराने को सुनते सुनते हमारी अधूरी बात को आज पूरा करते हैं, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस को लेकर बात हो रही थी और इस दिन से जुड़े इतिहास को साझा करूंगी ऐसा मैं कह रही थी। तो चलिए, इतिहास तो यही कहता है कि ये दिन 1966 की उस विशेष यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बैठक की याद दिलाता है, जिसमें शिक्षकों की स्थिति, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों को मंजूरी दी गई थी। विश्व शिक्षक दिवस और भारत में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को लेकर अगर बात करें तो विश्व स्तर पर आज के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है, जबकि हमारे देश में गुरुओं के नाम भी एक दिन डेडिकेटेड है। वैसे तो उन गुरुओं को हमेशा ही सलाम है, याद हम करते हैं जिन्होंने हमें सही मार्ग पर चलना सिखाया, लेकिन फिर भी हमारे देश में 5 सितंबर को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो बात हो रही थी गुरुओं के नाम दिन को डेडिकेटेड करने की, तो वो विश्व स्तर पर हो या फिर देश के अंदर गुरुओं के नाम एक खास दिन को मनाने की हो, वो गुरु वो शिक्षक है जिन्होंने सही गलत को पहचान कराने का बोध हम में डाला, सही इंसान हम बने इसके लिए उनके अनगिनत परिश्रम को भला हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। और इसीलिए वे गुरु जिन्होंने हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और सदा यही चाहा कि हम सही इंसान बने और एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज हम अदा करते चलें, उन गुरुओं को सदा ही नमन है। चलिए फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर और कार्यक्रम चल रहा है चाय एंड क्लासिक्स।

6:25 करना होगा इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त, और जल्द मुलाकात होगी आपसे। और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 107 FM रेनबो। समय रहेगा ठीक 7:02, लेकर आऊंगी आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छह लोग। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चायन क्लासिक्स इस कार्यक्रम के साथ। और कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Vyapar, arthavyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap in numbron par hame phone kar sakte hain. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550. इंडिया एंड स्विट्जरलैंड इंक सेवरल अग्रीमेंट्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त. निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुक करते हैं शेयर बाजार का. चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ. निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए.
0: So benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के

0: शेयर आज बढ़त में रहे। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ITC 4.5%, Eternal 2.5% और भारतीय एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे। वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो HCL टेक 3.7%, HDFC बैंक 2% और सन फार्मा और इंफोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%, mid-small private bank rose 1.7% and FMCG added 1.5%. In contrast, hospitals shed 2.3%, healthcare fell 1.1% and insurance dropped 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,448 companies declined, 2,052 advanced and 260 remained unchanged.
0: और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती के साथ 96.30 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
2: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद। सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक। एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है, तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी सही है पहला। और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है IPO का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका IPO आया था तो उसमें मैंने लिया था तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे।
3: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
0: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़त देखी है बाजार में 4 दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
3: देखिए, दो वजह है। एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही, लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था। तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाज़ार और ऊपर जाता। तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है। दूसरी तरफ क्या है कि बाजार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाजार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा। और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेजी आई। और एक और जो हमने अच्छी चीज़ देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक जो थे, जो अभी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उन्होंने नेट बाइंग करी है, तो ये ऐसे कारण है जिसका असर हमने देखा है। मूल रूप से आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल हैं, और आप केवल भारतीय बाजार की बात नहीं करें, एशिया के तमाम शेयर बाजारों की बात करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया आज बंद था उनका बाजार, बाकी जितने भी बात करें, चाहे चीन की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वहां परिस्थिति सकारात्मक रही, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जब सकारात्मक होंगी तो बाजार में भी आपको सकारात्मक माहौल दिखेगा।
1: शिशिर जी, यू टॉक्ड अबाउट द FIIs एंड FPIs काइंड ऑफ trying to make a comeback to the Indian markets, but if you look at the US bond markets, the treasury yields are still kind of, you know, pretty lucrative as compared to the Indian stock market. And of course, you're not talking of the Asian markets here. So do we really see MPC is also, you know, the outcomes of it will come in a couple of days. So how do you see it panning out? That is one. And of course, FPIs and FIIs, we do understand that they constitute the quite some pie of the Indian stock market when investing is concerned. So my question is that do we see the resurgence, as you mentioned in your opening comments, that the markets are already at an almost, you know, mouth-watering levels with most of the blue chips kind of, you know, trading at pretty discounted rates. So how do you see this in the coming days?
3: Coming to your first point about the yield, no doubt American bond market yield is very

0: नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
1: शिशिर जी, वी ऑलरेडी सॉ द इंडिया यू एफ टी ए बींग साइन, विच वॉज ऑब्वियसली यू नो टर्म्ड एज द मदर ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स, ट्रेड अग्रीमेंट्स। नाउ दिस agreement with EFTA countries, four countries, if I am given to understand, Liechtenstein, Iceland, Switzerland and Norway, these are the four countries. Now these are the four

0: जुड़ गए हैं। उमेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
1: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आज की डेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या लार्ज कैप्स सही रहेंगे या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और अगर आप एक प्रतिक्रिया और दे पाए कि मान लीजिए कोई 20% आल्दो मतलब 20% पेमेंट देके किसी अच्छे बिल्डर में एक बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया जाए, आल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें।
2: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज़्यादा रखिए। अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए। और उसके अलावा ये भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाएं जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक के फिक्स डिपॉजिट हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% देकर के एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुनें वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो। क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी होती तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है। तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक, जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र के हिसाब से शेयर और सोना। दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजनाएं। और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें
3: और बिल्डर रेरा अप्रूव भी हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल।
3: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद। मोहक वेलकम।
4: हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पैनलिस्ट। माय क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू इक्विटी मार्केट्स?
2: Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stock. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is, use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put 60 rupees in the, or 70 rupees in the bond, and then put remaining 30 rupees in the equity, because there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, you are to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
0: And briefly, bond market mein risk कम है,
2: बहुत कम होता है वहाँ पर। आपको मूल और ब्याज की एक गारंटी जो है सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहाँ मिलता है। अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा। लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है।
0: अब हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से अमित झा। अमित जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
5: नमस्कार सर जी को।
0: जी नमस्कार।
5: सीना सर, नमस्कार सर।
2: नमस्कार
5: सर, आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी का नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज IT कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो IT कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है? और दूसरी चीज सर कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर वो खासा उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीड़ित थी सर। धन्यवाद सर।
2: देखिए, मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो दो तीन कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे

0: दे रहे हैं तो उसमें उम्मीद एक ज्यादा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखिए अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस समय में उसकी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप देखेंगे कि ऑटो में जो है वो वापसी एक होगी। और आज की रैली में भले उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आज की रैली अगर आपने देखी होगी तो उसमें ज़्यादा जो योगदान था उसमें जैसे FMCG का योगदान था या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का योगदान था, वहाँ पर अगर आप IT सेक्टर की बात करेंगे तो IT सेक्टर में नुकसान ही हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। क्योंकि बीच में जब AI कंपनीज ने कहा कि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा AI कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और IT दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इनमें जो मेरे लिए जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा।
1: लेते हैं अगली खबर। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि अमरीका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: So, ब्रीफली आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे को एंकर, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया EU डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की, आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है?
0: दो पहलू हैं, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं। ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है, और देखिए उसमें जो हमारा पुराना जो बना हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है और कोशिश ये है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
3: राइट, एंड द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी,
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जब शेयर मार्केट में हम हमारे स्क्रिप्ट खेल करते हैं तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या, कितना इसके ऊपर टैक्स कट होता है क्या, और वो है, और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे?
0: रत्नाकर जी, अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके AIS में वो दिखेगा, फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे। आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में उसमें STT जरूर कटा हुआ होता है, STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए, जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, और अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं, लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
1: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर हैं और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के अंत में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 2023 में हुई थी, जब आरबीआई ने दर को 25

0: आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार अंक।
1: जी ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है, तो शायद हमें उसका असर नीतिगत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा।
2: And how much does the the Fed kind of sets the template for that?
1: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise. Right. So that could be one of the reason why RBI is also talking about that.
0: Right. अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर आज बढ़त का रुख था। ताइवान का ताइएक्स 2.5% उछल गया। जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो जर्मनी का डैक्स 0.1% के नुकसान पर था। हालांकि दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.3% की तेजी पर था।
2: And meanwhile we are joined in by our caller from Assam, Shukrat Limbo, welcome.
3: सर गुड इवनिंग सर।
0: जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
3: सर मेरा प्रश्न ये है कि सर एनपीएस में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में एनपीएस में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है, मेरा प्रश्न यही है।
1: नहीं बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
0: और एक इम्पॉर्टेंट खबर, नई परचेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत 2,000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शून्य होगा। छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा क्यूआर कोड को अपग्रेड करने या बदलने की जरूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौजूदा क्यूआर ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक QR स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी UPI QR कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे। NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बैंक शाखा में जाने की, QR कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: Global crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
0: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रुपए प्रति किलो पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी।
1: धन्यवाद,
2: थैंक यू शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। The benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 450 points, Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in the positive territory. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10,00,000 डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पाहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्कॉटहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक, इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जन सेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है, और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है, वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है, और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है, और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के, और अंतिम पंक्ति पे जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है, और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
3: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो जेसीबी है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
1: जी।
3: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जेसीबी को

0: ट्रेन पर ले जाया जाए, तो इट वॉज उनको कितने सारे जेसीबीज को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
1: जी।
0: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको वो लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
1: जी।
0: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के, उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है, इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल,
0: तब लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेराफेरी है उस रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खास तौर पर बड़ा रोल निभाया है?
2: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था, वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है, उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है, वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है, पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
1: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो

0: यूपीआई ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेहड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह यूपीआई के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
1: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना के लिए, जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया, और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है, वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के? और कम से कम 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं भी पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपनी बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई, गए आप सब्जी लेने गए तो UPI कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है, ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्होंने उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना होए, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
0: बिल्कुल, यानी अवसरों की
1: बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक,
0: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम UPI की तो बात कर ही रहे हैं, तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
2: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के

0: थ्रू होता है, और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमईज या उद्यमी हैं उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है। चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा, और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
0: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स है उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड हैं वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल, अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की। सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है, इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात कर करते हैं, उससे कैसे इससे मदद मिली है?

0: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इसे अचरज नहीं होता हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
2: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गाँव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में, विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माईगोव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म

0: के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खास तौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउडसोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है, और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: एक बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियोलोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनी चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को।

0: वो जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 9094044।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा

0: करने की भी यही उम्र है, राइट?
1: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
2: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
0: आई नो ना।
2: RBI कहता है
3: तरो से ही शुरुआत बनो।

0: लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की।
2: निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सेंटर पर आने वाले मामलों के रिकॉर्ड और उनके फॉलोअप की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से राजधानी के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रति माह मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक मामले की पुलिस सूचना, FIR की स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पीड़िता को मिली वास्तविक सहायता का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य हो। श्रीमती गुप्ता ने पॉक्सो मामलों में गोपनीयता के साथ पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष।

0: और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी का महत्व दर्शाती है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज भी देंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करेंगी।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देश अपेक्षा करते हैं कि भारत विश्व पटल पर इन देशों की चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का विश्व के साथ जुड़ने का व्यापक दृष्टिकोण देश को अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। उन्होंने अमरीका को भारत का प्रमुख रणनीतिक और रक्षा साझेदार तथा सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक भागीदार बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने इस बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डायसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया है। भारत ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के सभी 5 सदस्यों ने पदक जीते। भारत ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया है। वियतनाम के हनोई में 25 सितंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। भारत पदक तालिका में वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर रहा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said both nations identified new possibilities for cooperation in military exchanges and defence production. He said they have also agreed to further deepen cooperation in nuclear energy.

0: আমরা রবীন্দ্রনাথকে খুঁজব শরতে, যেভাবে শুরু করলো সুদীপ্ত, ঠিক সেভাবে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজব শান্তিনিকেতনে। এর কারণ একটাই, বারবার মনে হয় যে এই যে শান্তিনিকেতনে তিনি যদি না এসে পৌঁছতেন, তাহলে যা যা কিছু হলো শান্তিনিকেতনে সেসব নিশ্চয়ই হতো না। এটা সত্যি কথা,
1: একদম। একটা লালমাটি,
0: তিনি শুধুমাত্রই তার পিতৃদেবের পছন্দের জায়গা বলেই তিনি ছিলেন
1: না, সেটা বোধ হয় একদমই নয়। কারণ ধরো, লালমাটির একটা উষার প্রান্তরে যেখানে কিচ্ছু ছিল না, সেই শান্তিনিকেতন কিন্তু বদলে গেল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং গুরুদেবের হাতের ছোঁয়ায়। এবং পরবর্তীকালে জীবনের শেষ প্রান্তে আমরা আসবো সেই আলোচনায়, তিনি একটা কথা বলছেন যে আমি সাহিত্য থাকতে চাই শান্তিনিকেতনের এই শান্তির মধ্যে, আমি কিন্তু কোনোভাবে কলকাতার কোলাহলে।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
2: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने

0: स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepen collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries. Our correspondent reported that the discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations and discussed ways to further deepen bilateral cooperation in several areas, including trade and investment, innovation and AI, military exchange and defence production and nuclear energy. Both sides also reaffirmed their commitment to peace, diplomacy and reform of global institutions. The two leaders discussed the ongoing conflict situation in the world. President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan today and hosted a banquet in his honour. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's approach of multi-alignment enables it to engage with all important players in the world, including US, Russia and China. Dr. Jaishankar was addressing the 5th Cotillier Economic Conclave in New Delhi today on the theme India and the World, Adaptive by Design.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अंकरा रीसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च

न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अगले चार मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।